कुछ पाया लेकिन चूका मैं तुझको पाने में, दर्स मैं तेरा कैसे पाऊं ओ घट घट के वासी, दर्स मैं तेरा कैसे पाऊं ओ घट

0: गीता ज्ञान।
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथमा प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुमधुर रसमय भजन का साथमा अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। जीवन जीवने कला श्री श्री रविशंकर जी को एक प्रयास आर्ट अफ लिविंग को संयोजन में FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम अमृत धारा प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 5:30 देखि 6 बजेसम्म र साँझ 8 बजेदेखि 8

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: तड़पाने वाले आ लग जा गले, मिल जाए हमको करार
1: थोड़ा थोड़ा
0: होठों पे इनकार थोड़ा थोड़ा।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोक
0: जय माता दी गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नु हुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
7: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
5: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
8: Four eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनी सूट,
4: अनि मलाई

0: ಸಾವೇರ್ ಚುಚ್ಚೆ ಪಾಟಿ
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

युग युग माया को बैरी अधिन संसार तिमी मेरो मा तिम्रो मुना मदन जस्तो युग युग माया को बैरी अधिन संसार तिमी मेरो मा तिम्रो मुना

0: सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: हे हे,
2: हाय हाय,
1: बाफ रे बाफ,
2: वाव वाव,
1: जाऊ न जाऊ,
2: आऊ त आऊ, श्रेष्ठ टेलरिंग,
1: या बेबी या।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 9820076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

0: यहीं पर।
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: गोल्ड प्यालेस, सुप्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नु हुनेछ।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: यहाँहरू अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.5।

0: श्रेष्ठ टेलरिंग
1: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ टेलरिंग
2: FM अध्यात्म ज्योति 104.8

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

कोई वस्तु जैसे होंगे क्या? परमेश्वर माने उनके मुकुट होगा, बांसुरी होगी, या शंख चक्र होगा, या त्रिशूल होंगे, कैसे होंगे परमेश्वर? बोलते नहीं, जैसे आकाश है, एक घट के भीतर बाहर जैसे आकाश है, वैसे तेरे भीतर बाहर परमेश्वर है। परमात्मा से वियोग एक क्षण के लिए भी असंभव है। उनसे वियोग हो जाए तब तो उनका सर्व सर्वव्यापी तो खत्म हो जाएगा। परमात्मा जब सब जगह मौजूद है, सब जगह उनकी व्याप्ति है, तो उनसे बाहर उनके परि है क्यों? आकाश के बाहर कुछ भी नहीं है।

ये करो बोल बोल के वो थक जाते। एक तो बोलते ये करो वो करो वो करो, मंत्र जाप करो, ये करो यज्ञ करो, कुछ करो करो करो करो, और क्या करें करें करें करें, इस चक्कर में आके दोनों डरते रहते हैं, बोलते रहे। अष्टावक्र ने वास्तविकता को खोल के रख दिया जनक के सामने। देखो जिस चित्त में ठहराव आ गया वहां परमेश्वर का झलक मिल गया। अच्छा, ठहराव आने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं, सिर्फ इतना ही जानना है तेरे भीतर बाहर आकाश जैसे, एक घट के भीतर भी बाहर भी जैसे आकाश है।

कि खोजना भी एक क्रिया है। तो तुम निष्क्रिय हो जाओ, मतलब खोज भी एक क्रिया होगी, बल्कि बहुत बड़ा क्रिया है वो तो। मानसिक शारीरिक बौद्धिक क्रिया को ही को तुम खोज, हर स्तर पर तुम शांत हो जाओ।

0: कृपा करके इस प्रश्न को समझिएगा नहीं।
1: पहले तुम अपने आप को जानते क्या? मुझे जानने की चेष्टा तुम कर रहे हो, तुम तो खुद को जानते हो। तुमको खुद का ही परिचय नहीं है, तुम कितने बार इस दुनिया में आए हो, तुम कौन हो, पहले ये तो पहचानो ना, फिर मेरे को जानना बहुत आसान।

जिनके दिल में एक बार भी भक्ति का झलक मिल जाए, फिर वो जब खोली से महसूस होने लगता बहुत जी कर आता है। वो पूछनी होती कि जो भक्ति का रस मिल गया, मुझे हो गया, जब वो भक्ति की जहां का भी एक झलक मिल जाती है, फिर बाद में उसके ना होने का भाव

भी शुद्ध बनाओ तो मन प्रसन्न प्रसन्न चित्त से खाना खाओ। अक्सर जब हम प्रसन्न होते भोजन इतना उतरता नहीं गले में, और बेचैनी होती है तो ज्यादा ज्यादा खा पड़ते हैं, इतने होश के साथ भोजन।

Bapak saya Ustaz ingat bangsa di orang tapi bingkul saja. Tapi saksa ini bangsa kata jauh pun kali kau bangsa ini kata किसी की ईमानदारी पर संशय करते हैं, किसी की बेईमानी पर आज तक किसी ने कोई संशय नहीं उठा। इसी तरह से कोई आपसे पूछते हैं तुम सुखी हो तो हाँ करते हो, पता नहीं। कोई पूछे तुम दुखी हो।